शुक्री सासा जुलुई नक्सन गुड मॉर्निंग ऑल थिंग्स आर वर्किंग फ्रेड हैमंड ऑल थिंग्स आर वर्किंग एम्फिशागालुएनी ऑल थिंग्स आर वर्किंग एम्फिशागालुएन गुड मॉर्निंग हैव फेथ बिलीव इन गॉड इज अल्फा एंड ओमेगा द बिगिनिंग एंड द एंड ऑल थिंग्स आर वर्किंग